0: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपने सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए।
1: MGM's College of Communication, Culture and Media ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनी नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन।
2: एडमिशन ओपन फॉर BA MCJ, BA मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, BA इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा और MA ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। विजिट MGM कैंपस, N6 सिडको, छत्रपति।

talk about healthy life. You are listening MGM 90.8 FM. RJ Adnan आपके साथ है और मौसम में बारिश शुरू है फिलहाल और इस वक्त ना तो सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है. तो कुछ इम्पोर्टेंट पांच टिप्स जो मैं अभी आपको बताऊंगा. तो सबसे पहले ये है कि इस मौसम में ना तो आप उबला या फिल्टर किया हुआ पानी पिए. बारिश में पानी से होने वाले जो बीमारियां है वो बहुत बढ़ती है, इसलिए साफ पानी पिए और उबला और फिल्टर हुआ पानी यूज करें. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्ट्रीट फूड से थोड़ा बचिएगा. इस मौसम में बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं. घर का ताजा और गर्म खाना बेहतर ऑप्शन है आपके पास और स्ट्रीट फूड से थोड़ा अवॉइड करें. स्ट्रीट फूड को आपको नजर भी आए तो उसको कहना भाई मुझे माफ कर, अभी तो मैं तेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि ये आपकी हेल्थ खराब कर सकता है इस मौसम में. और हाँ, भीगने का तो बहुत आपको शौक होता है ना, तो भीगने के बाद तुरंत कपड़े बदल दीजिएगा. गीले कपड़ों में देर तक रहने से सर्दी खांसी और फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं. एंड एक मच्छर भाई बहुत कुछ कर सकता है, तो मच्छरों से जरा बच के रहिएगा. घर के आसपास पानी जमा ना होने दे और मच्छरदानी या रिपेलेंट का इस्तेमाल करें. डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ जाता है इस मौसम में. एंड फिफ्थ वन इज इम्यूनिटी बढ़ाने वाला खाना ही खाए. मौसमी फल, हरी सब्जियां, अदरक, हल्दी और विटामिन सी से भरपूर चीजें अपनी डाइट में शामिल करें. और छोटी सी सलाह ये भी है कि अगर लगातार बुखार, उल्टी, दस्त या तेज कमजोरी महसूस हो तो खुद दवा ना ले, बजाय डॉक्टर के पास चले जाए, उनसे दवाई लिखवाए और अपना ट्रीटमेंट करवाए. बारिश का मौसम जितना सुहाना है ना, उतनी सावधानी जरूरी है. तो ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए.

निभाया नहीं है, इस वजह से गाना उनको सुनने की बड़ी इच्छा कर रही है। तो चलिए फिर आप निवाद की फरमाइश पर ये अगला गाना एंजॉय करते हैं। जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपकी भी कुछ फरमाइश हो तो व्हाट्सएप कीजिएगा 9359320080 पर, 9359320080 पर आपकी फरमाइश मुझे बताइए, मैं वो पूरी करूँगा।

क्या है जानते हो? आज है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। हेलो, मैं सिल्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमसीएम 90.8 एफएम। ब्रॉडकास्टिंग डे यानी कि ब्रॉडकास्ट, जिसके जरिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसी की शुरुआत हो गई थी 30 जुलाई 1927। ये वो दिन था जब बॉम्बे से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी आईबीसी ने भारत का पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट शुरू किया था। उस वक्त रेडियो एक नई टेक्नोलॉजी थी और बहुत कम लोगों के पास रेडियो सेट हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ये आवाज घर तक पहुंचने लगी। हालांकि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी। 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रॉडकास्टिंग की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली और इसका नाम इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के रूप में रखा गया। फिर आया साल 1936 जब इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया, और 1957 में ऑल इंडिया रेडियो को एक नया और अपना नाम मिला, जो कि आज तक वही नाम से हम उसको जानते हैं, दैट्स कॉल्ड आकाशवाणी। आजादी के बाद ना तो रेडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट का मीडियम नहीं रहा था, ये देश को जोड़ने का जरिया बना था। किसानों तक खेती की जानकारी पहुंची, स्टूडेंट तक शिक्षा पहुंची, घर घर तक खबरें और हर दिल संगीत पहुंचा। इसी इतिहास को याद करने का और ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े हर प्रोफेशनल, आरजे, न्यूज रीडर, प्रोड्यूसर, इंजीनियर और टेक्नीशियन को सम्मान देने का ये आज का दिन है, 23 जुलाई, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज जब आप रेडियो सुन रहे हैं ना, या कोई ब्रॉडकास्ट टेप कर रहे हो, या तो जरा सोचिएगा, ये सर्विस को 99 साल पूरे हो रहे हैं आज के दिन। सो हैप्पी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। स्टे

0: अगर रेडियो कभी बना ही ना होता, यानी कि ब्रॉडकास्ट हुआ ही ना होता। हेलो, माय सेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। शायद हमने ना लाइव कमेंट्री का मजा उठाया ही नहीं होता, वो महसूस नहीं हुआ होता। शायद जंग हो या बारिश, इलेक्शन हो या इमरजेंसी, हर घर तक एक साथ खबर पहुंचना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होता। 3 जुलाई 1997 को बॉम्बे यानी कि आज के मुंबई से पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था। वही दिन था जब भारत ने ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। आज ब्रॉडकास्टिंग सिर्फ एफएम तक सीमित नहीं है, आज पॉडकास्ट, इंटरनेट रेडियो, लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बदलते गए हैं, लेकिन एक चीज है बदली नहीं, वो है आवाज की ताकत। एक सच्ची आवाज मोटिवेट भी करती है, एजुकेशन भी देती है, एंटरटेन भी करती है और कभी कभी किसी की जिंदगी बदलने में एक मदद भी करती है। इसलिए ब्रॉडकास्टिंग डे सिर्फ रेडियो का सेलिब्रेशन नहीं है, ये कम्युनिकेशन की उस ताकत का सेलिब्रेशन है जो लोगों को जोड़ती है, सोच बदलती है और उम्मीद जगाती है। तो आज जब भी रेडियो ऑन कीजिएगा या कोई पॉडकास्ट सुनिएगा, एक बार उन सब लोगों को जरूर याद कीजिए जो माइक के पीछे रहकर भी आप तक हर रोज एक नई कहानी, एक नई मुस्कान और एक नई सोच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान, और भी बहुत सारी बातें होगी कुछ ही देर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय, मग एमजीएम युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
2: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड बीबीए एलएलबी आणि पदवी नंतर 3 वर्षांचा एलएलबी हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी एलएलएम मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। त्यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
1: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च एमजीएम युनिव्हर्सिटी। Visit mgmu.ac.in।
3: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी एमजीएम पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। एमजीएम क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। एमजीएम पेट केअर।
4: ऍडमिशन ओपन एमजीएम युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम बीटेक 4 इयर्स आफ्टर HSC, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, IoT, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus, N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar.
5: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार

आपने एक बात तो नोटिस की होगी कि अपने शहर में दूध आजकल थोड़ा कम मिल रहा है दुकानों पर, की है ना नोटिस? हेलो, मायसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। एंड एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दो तीन महीने के अंदर ना तो 19,000 लीटर दूध थोड़ा कम अपने शहर में आ रहा है हर दिन, और ये हर दिन हो रहा है। एंड इस वजह से ना तो दूध का शॉर्टेज भी शहर में नजर आ रहा है। इसी के साथ बस दूध नहीं, पनीर भी थोड़ा कम हो चुका है, और कुछ कुछ होटल से तो पनीर गायब भी हो गया है। एंड जो होटल वाले कहते थे कि आम्ही शुद्ध पनीर देतो तुम्हाला, सगळ्यात आधी ना त्या हॉटेलमधून पनीर गायब होताना दिसतोय। और जिस हॉटेल में पनीर है ना तो वहां पर ऐसे बोर्ड लगाया वाला है कि आमच्याकडे शुद्ध 100% शुद्ध असं पनीर आहे। यानी कि इतने टाइम से हम सब पनीर हो मिलावटी खा रहे थे, और दूध भी इतना 19,000 लीटर कम आ रहा है अपने शहर में हर दिन। तो सोचिएगा इतना दूध मिलावटी था अपने शहर में आने वाला, जो कितने सालों से हम खा रहे थे पी रहे थे, और दो तीन महीने से इसका शॉर्टेज हो चुका है। एंड जो छोटे मोटे ब्रांड थे ना दूध के, वो भी पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि FDA जो कार्रवाई कर रहा है, इस वजह से फूड और ड्रग्स के जितने भी ये डीलर्स हैं जो बेचते हैं, होटल इंडस्ट्री है जो बनाते हैं, वो मिलावटी सामान मार्केट में लाने से डर रहे हैं। और ये डर बना रहना चाहिए ताकि हम सभी की सेहत अच्छी रहे, वरना इतने टाइम से हम सब लोग मिलावटी खाना खा रहे थे, हर एक चीज में मिलावट थी भाई। अब जाकर हमें पता चल रहा था कि कितना मिलावटी खाना अपने जिस्म के अंदर चला गया है। होप सो ये ऐसे बरकरार रहेगा। एक बात कहनी यार मुझे FDA से, यार आप प्लीज ना वक्त से वक्त निकाल कर जितने भी शहर की मेस है ना जहाँ पर स्टूडेंट्स खाना खाते, वहाँ पर खाना कैसा बनता है? क्योंकि भाई जिस मेस में मैं खाना खाता हूँ, मुझे पता है वहाँ पर दाल के नाम पर बस पानी दिया जाता है, और टेस्ट ऐसा होता है कभी कभार ढूंढना पड़ता है कि टेस्ट कहाँ है, फिर कोई मसाला भी काम नहीं आता उस टेस्ट को।

आज के वक्त में किस टाइप के और किस तरीके के फ्रॉड आ रहे हैं ना, देखकर ताज्जुब होता है। हेलो, मायसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमटीएम 90.8 एफएम। और आपने साइबर फ्रॉड के बारे में सुना होगा, फिर ऑनलाइन अरेस्ट के बारे में सुना होगा, और अपने अकाउंट से क्लिक में पूरा की पूरा पैसा खाली हो जाता है। ये सब फ्रॉड के बारे में हमें पता है, लेकिन आजकल एक नया फ्रॉड मार्केट में आ गया है, वो है प्रोफेसर फ्रॉड इस नाम से। अब इसमें क्या होता है, किसी कॉलेज के प्रोफेसर को एक कॉल आता है और सामने वाला बंदा कहता है कि सर मेरा नाम XYZ है, मैं आपकी कॉलेज का पास आउट हूँ, फिलहाल मेरे पास जॉब नहीं है, मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत सीरियस है, मेरे पापा गुजर गए और मेरे पास अभी हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए पैसा नहीं है। और वो बंदा इतना रोता है, इतने मिन्नतें करता है, और सामने वाले बंदे को लगता है कि नहीं यार, ये जेन्युइनली सच बात कह रहा होगा, मेरे कॉलेज का है, मेरा स्टूडेंट है। तो प्रोफेसर को ऐसा लग रहा होगा, और प्रोफेसर एंड स्टूडेंट का एक रिश्ता होता है भाई, एक दूसरे को समझते हैं, और अक्सर प्रोफेसर ना तो अपने स्टूडेंट्स की मदद करते। तो प्रोफेसर लोगों को लग रहा था कि यार ये तो अपना जेन्युइन कोई बंदा होगा अपने कॉलेज का, इसकी मदद करते हैं। और फिर मदद करने के बाद पता चला कि यार ये तो एक फ्रॉड था, ऐसा कोई है ही नहीं। तो कुछ इस तरीके के फ्रॉड भी अपने शहर में आजकल बढ़ रहे हैं, जिसको कहते हैं प्रोफेसर फ्रॉड। और प्रोफेसर के नाम और नंबर कहां से निकाल रहे हो, कॉलेज के वेबसाइट के ऊपर से। और पिछले एक महीने से ऐसा फ्रॉड अपने शहर में चल रहा है, अलग अलग टीचर्स को, प्रोफेसर को ऐसे कॉल आ रहा है, तो थोड़ा बच के रहिएगा। और हाँ, अगर आपके पास भी सर टीचर प्रोफेसर जी कॉल आती होगी ना, तो उसको रीचेक कीजिएगा कि ये सच में आपके किसी स्टूडेंट का कॉल है या फिर फ्रॉड कॉल है। अगर सच में बंदा पैसे मांग रहा हो और आप उसको जानते हो और मदद करना चाहते हो, तो हॉस्पिटल जाकर मदद कीजिएगा, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर मत कीजिएगा। तो ऐसी पूरी गैंग अभी अपने शहर में घूम रही है, तो बी से प्रोफेसर अब अगले टारगेट आप भी हो सकते हो। तो अननोन कॉल मत उठाइए, अगर उठा ही रहे किसी की मदद करना है, तो पहले उसका बैकग्राउंड चेक कीजिएगा कि सच में इसको मदद की जरूरत है या एक फ्रॉडर है। बी सेफ एंड स्टे ट्यून।

बरसात का मौसम हो और चाय का मजा ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये मजा थोड़ा चेंज हो गया है आज के वक्त में, लेकिन पॉजिटिव तरीके से। हेलो, मायसेल्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। मौसम मस्ताना है आणि चहा सोबत असताना, और जब बारिश होती है तो हम अक्सर खड़े रहते हैं चाय के टपरी के पास बरसात कम होने तक, और बरसात का मजा लेते हैं चाय के चुस्के के साथ। पहले कैसा चाय हम पीते थे प्लास्टिक के और पेपर कप में, जो नैनो कप आते थे उसमें, और वो तो पूरी तरीके से अब बैन हो चुके हैं और वो यूज करना भी इलीगल है, और इस वजह से बैक टू हर एक चाय टपरी के ऊपर कांच के ग्लास आ गए है, एंड चाची जी कब बसी आती ना ती पण आता बैक टू स्टॉलवर आलेली आपल्याला दिसतीय। और खास बात यह हुई कि चाय का कप जो है ना वो थोड़ा बड़ा होता है, चाय की क्वांटिटी भी बढ़ गई है, एंड रेट की बात करें तो भाई साहब रेट मत पूछो यार। जब मैं कॉलेज में था तब चाय मिलती थी 5 रुपए कटी, आज 8 रुपए 10 रुपए हो गई, और अपने कैनॉट प्लेस में तो आप चाय के रेट 15 रुपए तक पहुंच गए भाई, एक चाय के रेट 15, जो कि कल तक 12 थे आज 15 हो गए। एंड पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया, तो जवाब आता यार गैस कितना महंगा हो गया इस वजह से हमने चाय के रेट बढ़ा दिए। चाय लवर्स के लिए ना चाय कितनी भी महंगी हो जाए वो कम नहीं करते, जितनी मिले उतनी पीते ही रहते हैं। खैर अब इतनी चाय की बात हो रही है तो मैं भी जरा चाय की चुस्की लेकर आता हूँ, आप भी लीजिए और जरा नोटिस कीजिए अपने शहर के चाय के कप थोड़े बदल गए हैं। स्टे ट्यून्ड।

एक टाइम था यार जब ना तो हम कहते थे अरे जेंसी ये तो बस रील्स बनाते हैं, मीम्स शेयर करते हैं, दो मिनट से ज्यादा इनसे फोकस होता ही नहीं है। आई मायसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। लेकिन जब किसी बात पर ये जनरेशन सीरियस हो जाती है तब सबको

0: समझ आता है कि स्क्रीन के पीछे सिर्फ फिल्टर नहीं ओपिनियन भी होते हैं, और ये सिर्फ जेंजी ही नहीं मिलेनियल्स भी काम करते हैं। ऐसे ही एक जनरेशन ने इंटरनेट बनते हुए देखा और दूसरे ने इंटरनेट को अपनी आवाज बनाई, और वो आवाज किस तरीके से है आज हम सभी लोग देख रहे हैं। वैसे ऑफिस में भी ऐसे होता है जेंजी और मिलेनियल्स का। जेंजी सिर्फ वर्क लाइफ बैलेंस की बात नहीं करता बल्कि पूछते भी है कि ये प्रोसेस ऐसे ही क्यों है, इसको बेटर कैसे बना सकते हैं। अगर बॉस कुछ हद से ज्यादा ही परेशान कर रहा है या सैलरी लेट आ रही है या अपने काम से ज्यादा काम दिया जा रहा है, तो मिलेनियर्स क्या करते हैं या 90s किड्स, उनको आदत हो गई है ना, चलो बॉस ने कहा है ना हम कंप्लीट कर देते हैं, आगे काम आ सकता है बॉस अपने लिए। लेकिन जेंजी ऐसा नहीं करते हैं, जेंजी डायरेक्टली कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, ये मैं नहीं करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते। इस वजह से जेंजी पसंद है भाई अपने को। देखो दोनों भी अपने अपने जगह पर सही है, मिलेनियर्स को और 90s किड्स को उस चीजों की आदत हुई है प्रेशर झेलने की, जेंजी वैसे नहीं है। तो अगली बार किसी जनरेशन को सिर्फ मेम्स या स्टेरियोटाइप से जज मत करना, क्योंकि जनरेशन की ताकत उसकी एज में नहीं उसके सोचने, सवाल पूछने और सही वक्त पर सही स्टैंड लेने में होती है, और सवाल पूछने की आदत जेंजी में बहुत है, नोटिस कीजिएगा ये चीज। एंड बाकी तो स्टे ट्यून्ड।
1: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
2: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि 10वी नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। या सोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
1: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी।
3: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
4: ऍडमिशन ओपन।

वैसे बात जनरेशन की कर रहा था ना, तो एक बात तो है, थैंक गॉड क्योंकि आज की जनरेशन टीवी नहीं देखती। हेलो, माय सेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। भाई साहब, एक टाइम था जब ना तो टीवी न्यूज चैनल के ऊपर जो न्यूज आती थी उसके ऊपर लोग आग बन करके भरोसा करते थे और लगता था कि भाई ये एंकर जो कह रहा है ना एकदम सच कह रहा होगा। और आज एक वक्त आ गया है जब हर किसी को डाउट होता है, चाहे जो एंकर ने कहा अभी न्यूज चैनल में ये सच बात होगी क्या, या झूठ कह रहा होगा, या बस टीआरपी के लिए कह रहा होगा। मैंने खुद देखा, एक टाइम था हमारे बचपन में जब पापा न्यूज चैनल देखते थे, हर दिन न्यूज आती थी, सलीके से आराम से समझाते हुए आती थी, नो टीआरपी गेम, नो चिल्लाना, नो इसको उसको बुरा भला कहना, हर किसी की इज्जत करना, और लगता भी था कि हम टीवी पर न्यूज देख रहे हैं। और आज के वक्त में लगता है कि यार हम न्यूज नहीं कॉमेडी शो देख रहे हैं, और हर कोई अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दों पर बात करता है। और पता नहीं लोग कहां से लाते हैं वो, जो कि डिबेट कम और धमकी, चिल्लाना और फेक न्यूज ज्यादा देते हैं। सो थैंक गॉड हमारे जनरेशन को, क्योंकि हमने टीवी पर न्यूज चैनल देखना कम कर दिए, इंस्टाग्राम पर रील्स देखना थोड़ा ज्यादा किया, क्योंकि रील्स के ऊपर आज के वक्त में जितनी सारी न्यूज आ रहे हैं ना, वो लगता है कि यार ऑथेंटिक न्यूज है, ऑन ग्राउंड वाली न्यूज है, उसके ऊपर कोई फिल्टर नहीं लगाया हुआ है। हाँ, कुछ कुछ होते हैं फिल्टर लगाए वाले न्यूज और फेक न्यूज भी, वो समझ में आ जाते हैं, लेकिन कुछ चैनल ऐसे है यूट्यूब पर कोई मिक्स मसाला नहीं होता। तो सवाल यही होता है यार, ये पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन वो जिंदा है कि आज के वक्त बड़ा सवाल है। जवाब मिले तो जरूर बताना और अपने गिरेबान में भी झांक लेना, समझदार को इशारा काफी।

माशु का गाना भी आप एंजॉय कर रहे थे, जो अभी बहुत ही बेहतरीन फिल्म आई थी उसी से था। फिल्म का नाम क्या था हरभाई, तो भूल गया, कॉकटेल टू, इस फिल्म से गाना था माशु का। आरजी अदनान आपके साथ है और अभी मेरा वक्त हो चुका है आपसे अलविदा लेने का, टाटा बाय बाय करने का। मिलते हैं कल ठीक सुबह 7 बजे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाकी आपके क्या हाल चाल है और क्या कुछ मूड है आपके, जरा बताइए। डीएम कीजिएगा इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर। एंड बाकी तो टेक केयर, और यह अगला गाना आपके खिदमत में हाजिर है।

0: इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय.
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनियरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनियरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम.
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन, इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनियरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 9891-7844.
2: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM University, Institute of Chhatrapati Sambhajinagar.
3: Cosmetic Technology cha UG ani PG sathi admission milva. BTech ani MTech Cosmetic Technology sathi MGM University madhe Basic and Applied Sciences cha antargat aajach apla pravesh nishchit kara.
4: Ja madhe sarva prakarcha cosmetic products che formulation, raw materials, tanchi chemistry ani analysis sobatach new advanced technology hi shikhnyas milel. Shivay vividha namankit kampanyanmadhe placement chi hami suddha.
5: Admissions open for 2025-26. MGM University and 6 Sidko. Visit mgmu.ac.in. Call 9503082913.

0: बाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया इसीलिए खास बात खुदा में है।

0: N6 को छत्रपति संभाजी नगर।
1: चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट RJ और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा MGM 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे,
2: मैं हूं साथ तेरे, मैं हूं साथ तेरे।
1: तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
3: MGM 90.8 FM साथ।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

0: बाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा MGM 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: हवा से बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे,
2: मैं हूं साथ तेरे, मैं हूं साथ तेरे,
1: तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। गुड इवनिंग और आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आपका दिन शानदार रहा होगा। अगर दिन थोड़ा व्यस्त भी रहा हो तो अब समय है थोड़ा रिलैक्स होने का और खुद के लिए कुछ पल निकालने का। आप सुन रहे हैं हमारा प्यारा सा शो जहाँ अगले कुछ समय तक रहेगा शानदार संगीत, अच्छे बातें और आपका साथ। चाहे आप ऑफिस से घर लौट रहे हो, दोस्तों के साथ हो या फिर घर पर आराम कर रहे हो, हम चाहते हैं कि आपकी ये शाम और भी खूबसूरत बन जाए। जिंदगी की भागदौड़ में छोटी छोटी खुशियां ही हमें मुस्कुराने की वजह देती है। इसलिए आज खुद से एक वादा कीजिए, हर दिन कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आए। तो तैयार हो जाइए बेहतरीन गानों और शानदार माहौल के लिए। अगर आपका कोई पसंदीदा गाना है या आप किसी अपने को कोई प्यारा सा मैसेज देना चाहते हैं तो हमें ज़रूर भेजिए। हो सकता है आपका संदेश आज पूरे शहर तक पहुंचे। फिलहाल मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। आप सुन रहे हैं MGM 94.8 FM। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। आज अगर आपके शहर में हल्की हल्की बारिश हो रही है या फिर इससे पहले हल्की बारिश हो चुकी है तो एक सिनेरियो महसूस कीजिए। सुबह की शुरुआत और भी खास हो जाती है इस हालात में। ठंडी हवा, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और बारिश की हल्की सी फुहार, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद हमें मुस्कुरा कर गुड मॉर्निंग कह रही हो। ऐसे मौसम में चाय की एक गर्म प्याली, खिड़की के पास कुछ पल और आपके पसंदीदा गाने, बस दिन की शुरुआत इससे बेहतर क्या हो सकती है। अगर आप ऑफिस, कॉलेज या काम पर निकल रहे हैं तो छाता या रेनकोट साथ रखना मत भूलिए। ऐसे मौसम में सड़कें फिसलन भरी हो सकती है, इसलिए थोड़ा संभल कर चलिए और सुरक्षित भी रहिए। अगर आज आपको थोड़ा आलस महसूस हो रहा है तो कोई बात नहीं, बारिश का मौसम ऐसा ही होता है, लेकिन एक प्यारे से मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत कीजिए। और ऑफ कोर्स इस शाम को और भी बेहतरीन बनाने के लिए हम तो आपके साथ है ही, हमें तो बस मौके की तलाश रहती है कि आपके चेहरे पर कैसे मुस्कुराहट लाई जाए। इस खूबसूरत मौसम का मजा लेते हैं शानदार संगीत के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा और अब वक्त है एक ऐसे गाने का जो इस बारिश वाली फीलिंग को और भी गहरा और यादगार बना देगा। आप सुनते रहिए एमजेम 90.8 FM, साथ ही तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि बस अब और नहीं, रास्ते मुश्किल लगते हैं, मंजिल दूर नजर आती है और हिम्मत भी थोड़ी कम पड़ जाती है। लेकिन शायद जिंदगी हमें यही सिखाती है कि रुकना नहीं है, क्योंकि हर मुश्किल के बाद एक नया रास्ता जरूर मिलता है और हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। दोस्तों, मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो चलते रहते हैं, चाहे कदम छोटे हों। लेकिन अगर सफ़र जारी है तो यकीन मानिए, आप अपनी मंजिल की ओर करीब पहुंच रहे हैं। अगर आज आप किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं तो खुद पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि हर कोशिश आपको पहले से बेहतर बनाती है। तो आज खुद से बस एक वादा कीजिए, हालात जैसे भी हो हिम्मत नहीं हारेंगे और रुकेंगे नहीं। इसी खूबसूरत सोच के साथ आप सुनते हैं एक ऐसा गाना जो आपको आगे बढ़ने का हौसला देगा और याद दिलाएगा कि सफ़र जारी रखना ही सबसे बड़ी जीत है। आप सुनते रहिए MG 90.8 FM, साथ ही तो बात है।

0: आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता। बस दिल में एक हल्की सी खुशी, एक प्यारी सी मुस्कान और ऐसा लगता है कुछ खास होने वाला है। शायद इसी एहसास को प्यार कहते हैं। जब किसी का एक मैसेज पूरे दिन को अच्छा बना दे, किसी की मुस्कान बिना वजह चेहरे पर मुस्कान ले आए, या फिर कोई पुरानी याद अचानक दिल को छू जाए। ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसमें छोटे छोटे पल ही सबसे बड़ी खुशियां बन जाते हैं। अपनों के साथ बिताया हुआ समय, दोस्तों की मस्ती और कुछ यादें ऐसी होती है जो कभी पुरानी नहीं होती। तो अगर आज आपके दिल में भी कोई प्यारी सी याद है, किसी खास शख्स की मुस्कान है या बस पुराने दिनों की हल्की सी कसक है, तो ये अगला गाना आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अपनी यादों को फिर से जीने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब वक्त है एक ऐसे सदाबहार गाने की जिसे सुनते ही दिल मुस्कुरा उठता है। तो पेश है सुपरहिट सॉन्ग ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात।
1: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचे, मग एमजीएम युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
2: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड बीबीए एलएलबी आणि पदवी नंतर 3 वर्षांचा एलएलबी हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी एलएलएम मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। या सोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
1: अधिक माहिती साठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च एमजीएम युनिव्हर्सिटी किंवा विजिट mgmu.ac.in।
3: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी एमजीएम पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। एमजीएम क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। एमजीएम पेट केअर।
4: ऍडमिशन ओपन एमजीएम युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर एचएससी, कम्प्युटर सायन्स and engineering, IoT, cyber security including blockchain technology, computer science and engineering, cyber security, electronics engineering, VLSI design and technology, electrical engineering, robotics and automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 937171423 or visit MGM campus N6 Sidco, Chhatrapati Sambhajinagar.

0: Kajal.
1: Wait. I think we should go that way.
0: ये तो खराब है.
1: ये मेरा lucky charm है और ये मुझे हमेशा right direction देता है. Sometimes in life, you just have to let it go. और उसी flow में सही मंजिल.

0: आपको पता है कि एक गाना सुपरहिट कब होता है?
1: दिस इज आर जे मनीषा विद यू एंड पूरे स्वैग से स्वागत करती हूँ मैं आपका इन द शो ओनली ऑन MGM 90.8 FM।
0: तो यार जाहिर सी बात है, एक गाने को सुपरहिट बनाने के लिए उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। जैसे कि लिरिक्स परफेक्ट होने चाहिए, म्यूजिक परफेक्ट होने चाहिए, उसके साथ साथ गाने वाला सिंगर जो है वो भी परफेक्ट होना चाहिए, और इसके बाद जो आउटपुट निकलता है ना वो होता है ब्लॉकबस्टर। अब आप ही सोचो ना कि इतने सालों बाद भी हम पुरानी मूवीज को याद रखते हैं या पुराने एक्टर को याद रखते हैं, ऐसा क्यों होता है भला? पता है कहीं ना कहीं हम उनके गाने सुनते हैं और उन गानों से याद आता है कि अरे यार ये गाना तो इस मूवी का है और इस मूवी में तो ये एक्टर था और ये एक्टर तो कमाल का है। मतलब ये सारी बातें हमें गाने की वजह से याद रखते हैं। तो मूवी के लिए गाना बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉरेन कंट्रीज में गाने का रिवाज होता नहीं है, ज्यादा तक वो अपनी स्टोरी पे और एक्शन पे फोकस करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यार हमारे इंडियन कल्चर में गानों को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। और हमारी सारी मूवीज के रिलीज से पहले सॉन्ग एल्बम रिलीज होते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि गाने हमारी मूवीज की जान होते हैं। तो आइए सुनते हैं ऐसा ही एक बेहतरीन सॉन्ग। स्टेडियम टू MGM 90.8 FM साथ है तो बात है।

0: बहुत लोगों ने बोला है कि एज बस एक नंबर ही तो होता है, पर क्या हम इन बातों पे बिलीव करते हैं?
1: दिस इज आरजे मनीषा विद यू एंड पूरी स्वैग से स्वागत करती हूँ मैं आपका इन द शो On MGM 94.8 FM.
0: So यार आज इस बात पे ना मैं दिल से बिलीव करने लगी हूँ कि एज बस एक नंबर होता है. जैसे कि अगर हम बात करें आनंद बख्शी की, जी हाँ, ये एक बेहतरीन पोएट और लिरिक्स राइटर है जिन्होंने अपने गाने लिखने की जर्नी 90s से

स्टार्ट की है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि 2000 की एरा तक वो एक्टिव थे। मतलब अगर आप DDLJ और मोहब्बतें जैसी मूवी का नाम ले लो, उनके गाने आज भी हमारे जुबा पे छाए रहते हैं। और आपको पता है ये सारे गाने लिखे हैं आनंद बख्शी जी ने। जैसे कि हम कहते हैं कि एज की वजह से इंसान अपने एज को छोड़ के किसी और की एज के थॉट्स को रिलेट नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पर बात पूरी उल्टी पड़ गई है, क्योंकि ये जो एज वाला रूल है ना, वो कुछ लोगों पे बिल्कुल अप्लाई नहीं होता। कुछ आर्टिस्ट होते हैं, कुछ सिंगर होते हैं और कुछ एक्टर होते हैं जिनके ऊपर एज मैटर ही नहीं करती। और अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आनंद बख्शी का आप यही गाना सुन लो। स्टे ट्यून्ड टू MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: गाइस, जब हम गाने सुनते हैं ना तो बस एक्टर की तारीफ करते हैं या एक्ट्रेस की तारीफ करते हैं।
1: दिस इज आरजे मनीषा विथ यू एंड पूरे स्वैग से स्वागत करती हूँ मैं आपका इन द शो
0: उम्र के साथ साथ हम कितना कुछ सीख जाते हैं। बचपन में मैं गाने सुनती थी ना तो मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेस के ऊपर होता था कि वाव यार कितने अच्छे दिख रहे हैं, कितना अच्छा डांस कर रहे हैं और मुझे तो लगता था कि वही वो गाना गा रहे हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ समझ आया कि उनके पीछे छुपी हुई आवाज किसी और की होती है। और फिर मैं तारीफ करने लगी सिंगर्स की, यार लता मंगेशकर जी की आवाज कितनी बेहतरीन है, उदित नारायण कितने बेस्ट सिंगर है। लेकिन इन सारी बातों से परे एक बात थी, जो थी कि इस सॉन्ग के लिए जो म्यूजिक और जो लिरिक्स इम्पोर्टेंट है वो किसके है। और धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि म्यूजिक कंपोजर और लिरिक्स राइटर भी सॉन्ग के सुपरहिट होने में या सॉन्ग के पसंदीदा आने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और उसके बाद आज जब वो गाने मैं दोबारा सुनती हूँ ना, बिलीव ही नहीं कर पाती कि ये वही सॉन्ग राइटर और म्यूजिक कंपोजर थे जिनको मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। आनंद बख्शी का एक और सॉन्ग सिर्फ आपके लिए। स्टे ट्यून्ड टू एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: जाहिर सी बात है कि हर किसी का अपना सपना होता है और उन सपनों को पूरा करने के लिए पता नहीं क्यों लेकिन मुंबई जाना ही पड़ता है।
1: दिस इज आरजे मनीषा विद यू एंड पूरे स्वैग से स्वागत करती हूँ मैं आपका इन द शो
0: आनंद बख्शी की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही थी जिन्होंने टीन एज से ही शायरियाँ लिखना स्टार्ट कर दिया था पर कभी उन्होंने सोचा नहीं कि मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाऊंगा। इस तरफ बढ़ने की बजाय वो आर्मी नेवी इस जैसे फील्ड में गए लेकिन कहते हैं ना सपने हमें चैन से जीने नहीं देते और हम फिर उसी तरफ बढ़ जाते हैं जहां पर हमारी किस्मत हमें ले जाना चाहती है। तो आनंद बख्शी जी भी मुंबई चले आए और धीरे धीरे उन्होंने अपना इरादा पक्का किया कि उन्हें अब बॉलीवुड इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है। उसी के साथ साथ उन्हें कुछ गाने मिले जो इनिशियली बहुत सुपर हिट हुए और उसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। बहुत से गाने हैं, आइए सुनते हैं उसमें से ये एक। स्टे ट्यून्ड एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: आज क्या है जानते हो? आज है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। हेलो, मैं सिल्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमसीएम 90.8 एफएम। ब्रॉडकास्टिंग डे यानी कि ब्रॉडकास्ट, जिसके जरिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसी की शुरुआत हो गई थी 23 जुलाई 1927। ये वो दिन था जब बॉम्बे से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी आईबीसी ने भारत का पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट शुरू किया था। उस वक्त रेडियो एक नई टेक्नोलॉजी थी और बहुत कम लोगों के पास रेडियो सेट हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ये आवाज घर तक पहुंचने लगी। हालांकि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी। 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रॉडकास्टिंग की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली और इसका नाम इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के रूप में रखा गया। फिर आया साल 1936 जब इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया और 1957 में ऑल इंडिया रेडियो को एक नया और अपना नाम मिला, जो कि आज तक वही नाम से हम उसको जानते हैं, दैट्स कॉल्ड आकाशवाणी। आजादी के बाद ना तो रेडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट का मीडियम नहीं रहा था, ये देश को जोड़ने का जरिया बना था। किसानों तक खेती की जानकारी पहुंची, स्टूडेंट तक शिक्षा पहुंची, घर घर तक खबरें और हर दिल संगीत पहुंचा। इसी इतिहास को याद करने का और ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े हर प्रोफेशनल, आरजे, न्यूज रीडर, प्रोड्यूसर, इंजीनियर और टेक्नीशियन को सम्मान देने का ये आज का दिन है, 23 जुलाई, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज जब आप रेडियो सुन रहे हैं ना, या कोई ब्रॉडकास्ट प्ले कर रहे हो, या तो जरा सोचिएगा, ये सर्विस को 99 साल पूरे हो रहे हैं आज के दिन। सो हैप्पी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। स्टे ट्यून्ड।
1: फक्त इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय,
2: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग। सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन।
1: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
2: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन्स, इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप्स,
1: लिमिटेड सीट्स। आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 98 71 78 44।
3: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और ऑल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन। एडमिशन ओपन फॉर 2026-27। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546। MGM University, NCT, छत्रपती संभाजीनगर।
4: कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजीच्या UG आणि PG साठी ऍडमिशन मिळवा। BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी साठी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेसच्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
5: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्सचे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल। शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा।
6: Admissions open for 2025-26. MGM University, N6 SIDCO. Visit mgmu.ac.in. Call 9503082913.

0: अगर रेडियो कभी बना ही ना होता, यानी कि ब्रॉडकास्ट हुआ ही ना होता। हेलो, माय सेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। शायद हमने ना लाइव कमेंट्री का मजा उठाया नहीं होता, वो महसूस नहीं हुआ होता। शायद जंग हो या बारिश, इलेक्शन हो या इमरजेंसी, हर घर तक एक साथ खबर पहुंचना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होता। 30 जुलाई 1997 को बॉम्बे यानी कि आज के मुंबई से पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था। वही दिन था जब भारत ने ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। आज ब्रॉडकास्टिंग सिर्फ एफएम तक सीमित नहीं है, आज पॉडकास्ट, इंटरनेट रेडियो, लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बदलते गए हैं, लेकिन एक चीज है बदली नहीं, वो है आवाज की ताकत। एक सच्ची आवाज मोटिवेट भी करती है, एजुकेशन भी देती है, एंटरटेन भी करती है और कभी कभी किसी की जिंदगी बदलने में एक मदद भी करती है। इसलिए ब्रॉडकास्टिंग डे सिर्फ रेडियो का सेलिब्रेशन है, ये कम्युनिकेशन की उस ताकत का सेलिब्रेशन है जो लोगों को जोड़ती है, सोच बदलती है और उम्मीद जगाती है। तो आज जब भी रेडियो ऑन कीजिएगा या कोई पॉडकास्ट सुनिएगा, एक बार उन सब लोगों को जरूर याद कीजिए जो माइक के पीछे रहकर भी आप तक हर रोज एक नई कहानी, एक नई मुस्कान और एक नई सोच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान, और भी बहुत सारी बातें होगी कुछ ही देर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: Master tomorrow's tech today, not Sunday. Make today's one right decision, tomorrow's bright future. Join Dr. G.Y. Patrikar College of Computer Science and IT at NGM University for BSc Honours, BCA, Digital Marketing, Animation, Data Science, MSc and PG Diploma, NEP 2020 ready, world-class labs or real industry project start. Admissions open for Dr. G.Y. Patrikar College for 2026 and 27. For more information, visit mgmu.ac. or call on 937-117-4254.
2: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
3: तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी एमजीएम युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी।
4: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
5: पीजी, एमटेक इन एआय अँड एमएल, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये पीएचडी करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक।
4: ऍडमिशन्स ओपन, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404942 9.

आपने एक बात तो नोटिस की होगी कि अपने शहर में दूध आजकल थोड़ा कम मिल रहा है दुकानों पर, की है ना नोटिस? हेलो, मायसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। एंड एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2-3 महीने के अंदर ना तो 19,000 लीटर दूध थोड़ा कम अपने शहर में आ रहा है हर दिन, और ये हर दिन हो रहा है। एंड इस वजह से ना तो दूध का शॉर्टेज भी शहर में नजर आ रहा है। इसी के साथ बस दूध नहीं, पनीर भी थोड़ा कम हो चुका है, और कुछ कुछ होटल से तो पनीर गायब भी हो गया है। एंड जो होटल वाले कहते थे कि आम्ही शुद्ध पनीर देतो तुम्हाला, सगळ्यात आधी ना त्या हॉटेलमधून पनीर गायब होताना दिसतोय। और जिस हॉटेल में पनीर है ना तो वहां पर ऐसे बोर्ड लगाया वाला है कि आमच्याकडे शुद्ध 100% शुद्ध असं पनीर आहे। यानी कि इतने टाइम से हम सब पनीर हो मिलावटी खा रहे थे, और दूध भी इतना 19

लीटर कम आ रहा है अपने शहर में हर दिन, तो सोचिएगा इतना दूध मिलावटी था अपने शहर में आने वाला, जो कितने सालों से हम खा रहे थे पी रहे थे, और 2-3 महीने से इसका शॉर्टेज हो चुका है। एंड जो छोटे मोटे ब्रांड थे ना दूध के, वो भी पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि FDA जो कार्रवाई कर रहा है, इस वजह से फूड और ड्रग्स के जितने भी ये डीलर्स है जो बेचते हैं, होटल इंडस्ट्री है जो बनाते हैं, वो मिलावटी सामान मार्केट में लाने से डर रहे, और ये डर बना रहना चाहिए ताकि हम सभी की सेहत अच्छी रहे। वरना इतने टाइम से हम सब लोग मिलावटी खाना खा रहे थे, हर एक चीज में मिलावट थी भाई, अब जाकर हमें पता चल रहा था कि कितना मिलावटी खाना अपने जिस्म के अंदर चला गया है। होप सो ये ऐसे बरकरार रहेगा। एक बात कहनी यार मुझे FDA से, यार आप प्लीज ना वक्त से वक्त निकालकर जितने भी शहर की मेस है ना जहाँ पर स्टूडेंट्स खाना खाते, वहाँ पर खाना कैसा बनता है, क्योंकि भाई जिस मेस में मैं खाना खाता हूँ मुझे पता है वहाँ पर दाल के नाम पर बस पानी दिया जाता है, और टेस्ट ऐसा होता है कभी कभार ढूंढना पड़ता है कि टेस्ट कहाँ है, फिर कोई मसाला भी काम नहीं आता उस टेस्ट को वापस लाने के लिए। देखिए एक बार चेक कीजिए, एंड बाकी तो सुनते रहिए, स्टे ट्यून्ड।

आज के वक्त में किस टाइप के और किस तरीके के फ्रॉड आ रहे हैं ना, देखकर ताज्जुब होता है। हेलो, मायसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और आपने साइबर फ्रॉड के बारे में सुना होगा, फिर ऑनलाइन अरेस्ट के बारे में सुना होगा, और अपने अकाउंट से एक क्लिक में पूरा के पूरा पैसा खाली हो जाता है। ये सब फ्रॉड के बारे में हमें पता है, लेकिन आजकल एक नया फ्रॉड मार्केट में आ गया है, वो है प्रोफेसर फ्रॉड इस नाम से। अब इसमें क्या होता है, किसी कॉलेज के प्रोफेसर को एक कॉल आता है और सामने वाला बंदा कहता है कि सर मेरा नाम एक्स वाई जेड है, मैं आपके ही कॉलेज का पास आउट हूँ, फिलहाल मेरे पास जॉब नहीं है, मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत सीरियस है, मेरे पापा गुजर गए और मेरे पास अभी हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए पैसा नहीं है। और वो बंदा इतना रोता है, इतने मिन्नतें करता है, और सामने वाले बंदे को लगता है कि नहीं यार, ये जेन्युइनली सच बात कह रहा होगा, मेरे कॉलेज का है, मेरा स्टूडेंट है। तो प्रोफेसर को ऐसा लग रहा होगा, और प्रोफेसर एंड स्टूडेंट का एक रिश्ता होता है भाई, एक दूसरे को समझते हैं, और अक्सर प्रोफेसर ना तो अपने स्टूडेंट्स की मदद करते। तो प्रोफेसर लोगों को लग रहा था कि यार ये तो अपना जेन्युइन कोई बंदा होगा अपने कॉलेज का, इसकी मदद करते हैं। और फिर मदद करने के बाद पता चला कि यार ये तो एक फ्रॉड था, ऐसा कोई है ही नहीं। तो कुछ इस तरीके के फ्रॉड भी अपने शहर में आजकल बढ़ रहे हैं, जिसको कहते हैं प्रोफेसर फ्रॉड। और प्रोफेसर के नाम और नंबर कहां से निकाल रहे हो, कॉलेज के वेबसाइट के ऊपर से। और पिछले एक महीने से ऐसा फ्रॉड अपने शहर में चल रहा है, अलग अलग टीचर्स को, प्रोफेसर को ऐसे कॉल आ रहा है, तो थोड़ा बच के रहिएगा। और हाँ, अगर आपके पास भी सर टीचर प्रोफेसर जी कॉल आती होगी ना, तो उसको रीचेक कीजिएगा कि ये सच में आपके किसी स्टूडेंट का कॉल है या फिर फ्रॉड कॉल है। अगर सच में बंदा पैसे मांग रहा हो और आप उसको जानते हो और मदद करना चाहते हो, तो हॉस्पिटल जाकर मदद कीजिएगा, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर मत कीजिएगा। तो ऐसी पूरी गैंग अभी अपने शहर में घूम रही है, तो बी से प्रोफेसर अब अगले टारगेट आप भी हो सकते हो। तो अननोन कॉल मत उठाइए, अगर उठा ही रहे किसी की मदद करना है, तो पहले उसका बैकग्राउंड चेक कीजिएगा कि सच में इसको मदद की जरूरत है या एक फ्रॉडर है। बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।

बरसात का मौसम हो और चाय का मजा ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये मजा थोड़ा चेंज हो गया है आज के वक्त में, लेकिन पॉजिटिव तरीके से। हेलो, माय सेल्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। मौसम मस्ताना है आणि चहा सोबत असताना, और जब बारिश होती है तो हम अक्सर खड़े रहते हैं चाय के टपरी के पास बरसात कम होने तक, और बरसात का मजा लेते हैं चाय के चुस्के के साथ। पहले कैसा चाय हम पीते थे, प्लास्टिक के और पेपर कप में, जो नैनो कप आते थे उसमें, और वो तो पूरी तरीके से अब बैन हो चुके हैं और वो यूज करना भी इलीगल है, और इस वजह से बैक टू हर एक चाय टपरी के ऊपर कांच के ग्लास आ गए है, एंड चहाची जी कप बशी असते ना ती पण आता बैक टू स्टॉलवर आलेली आपल्याला दिसतीये। और खास बात ये हुई कि चाय का कप जो है ना वो थोड़ा बड़ा होता है, चाय की क्वांटिटी भी बढ़ गई है, एंड रेट की बात करें तो भाई साहब रेट मत पूछो यार। जब मैं कॉलेज में था तब चाय मिलती थी 5 रुपए कटी, आज 8 रुपए 10 रुपए हो गई, और अपने कैनॉट प्लेस में तो अब चाय के रेट 15 रुपए तक पहुंच गए भाई, एक चाय के रेट 15, जो कि कल तक 12 थे आज 15 हो गए। एंड पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया, तो जवाब आता यार गैस कितना महंगा हो गया, इस वजह से हमने चाय के रेट बढ़ा दिए। चाय लवर्स के लिए ना चाय कितनी भी महंगी हो जाए वो कम नहीं करते, जितनी मिले उतनी पीते ही रहते हैं। खैर अब इतनी चाय की बात हो रही है तो मैं भी जरा चाय की चुस्की लेकर आता हूँ, आप भी लीजिए और जरा नोटिस कीजिए अपने शहर के चाय के कप थोड़े बदल गए हैं।

0: एक टाइम था यार जब ना तो हम कहते थे अरे जेंसी ये तो बस रील्स बनाते हैं, मीम्स शेयर करते हैं, दो मिनट से ज्यादा इनसे फोकस होता ही नहीं है। आई एम मायसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। लेकिन जब किसी बात पर ये जनरेशन सीरियस हो जाती है तब सबको समझ आता है कि स्क्रीन के पीछे सिर्फ फिल्टर नहीं ओपिनियन भी होते हैं। और ये सिर्फ जेंजी ही नहीं मिलेनियल्स भी काम करते हैं ऐसे ही। एक जनरेशन ने इंटरनेट बनते हुए देखा और दूसरे ने इंटरनेट को अपनी आवाज बनाई, और वो आवाज किस तरीके से है आज हम सभी लोग देख रहे हैं। वैसे ऑफिस में भी ऐसे होता है जेंजी और मिलेनियल्स का। जेंजी सिर्फ वर्क लाइफ बैलेंस की बात नहीं करता बल्कि पूछते भी है कि ये प्रोसेस ऐसे ही क्यों है, इसको बेटर कैसे बना सकते हैं। अगर बॉस कुछ हद से ज्यादा ही परेशान कर रहा है या सैलरी लेट आ रही है या अपने काम से ज्यादा काम दिया जा रहा है तो मिलेनियल्स क्या करते हैं या 90s किड्स, उनको आदत हो गई है ना, चलो बॉस ने कहा है ना हम कंप्लीट कर देते हैं, आगे काम आ सकता है बॉस अपने लिए। लेकिन जेंजी ऐसा नहीं करते, जेंजी डायरेक्टली कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, ये मैं नहीं करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते। इस वजह से जेंजी पसंद है भाई अपने को। देखो दोनों भी अपने अपने जगह पर सही है, मिलेनियल्स को और 90s किड्स को उस चीजों की आदत हुई है प्रेशर झेलने की, जेंजी वैसे नहीं है। तो अगली बार किसी जनरेशन को सिर्फ मेम्स या स्टेरियोटाइप से जज मत करना, क्योंकि जनरेशन की ताकत उसकी एज में नहीं उसके सोचने, सवाल पूछने और सही वक्त पर सही स्टैंड लेने में होती है, और सवाल पूछने की आदत जेंजी में बहुत है, नोटिस कीजिएगा ये चीज। एंड बाकी तो स्टे ट्यून्ड।
1: Master tomorrow's tank today, not someday. Make today's one right decision, tomorrow's bright future. Join Dr. G.Y. Patrikar College of Computer Science and IT at NGM University for BSc Honours, BCA, Digital Marketing, Animation, Data Science, MSc and PG Diploma, NEP 2020 ready, world-class labs or real industry project start. Admissions open for Dr. G.Y. Patrikar College for 2026 and 27. For more information, visit mgmu.ac. Or call on 937-117-4254.
2: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
3: तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय? Institute of Information and Communication Technology, MGM University मध्ये मिळवा फ्यूचर रेडी प्रोग्राम ची सुवर्ण संधी।
4: बीटेक इन कम्प्युटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीटेक इन डेटा साइंस,
5: पीजी, एमटेक इन एआय एंड एमएल, एमटेक डेटा साइंस आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मध्ये पीएचडी करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी एंड डिजिटल फॉरेन्सिक।
4: ऍडमिशन्स ओपन, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299।

वैसे बात जनरेशन की कर रहा था ना, तो एक बात तो है, थैंक गॉड, क्योंकि आज की जनरेशन टीवी नहीं देखती। हेलो, माय सेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। भाई साहब, एक टाइम था जब ना तो टीवी न्यूज चैनल के ऊपर जो न्यूज आती थी उसके ऊपर लोग आग बन करके भरोसा करते थे और लगता था कि भाई ये एंकर जो कह रहा है ना एकदम सच कह रहा होगा। और आज एक वक्त आ गया है जब हर किसी को डाउट होता है, क्या जो एंकर ने कहा अभी न्यूज चैनल में ये सच बात होगी क्या, या झूठ कह रहा होगा, या बस टीआरपी के लिए कह रहा होगा। मैंने खुद देखा, एक टाइम था हमारे बचपन में जब पापा न्यूज चैनल देखते थे, हर दिन न्यूज आती थी, सलीके से आराम से समझाते हुए आती थी, नो टीआरपी गेम, नो चिल्लाना, नो इसको उसको बुरा भला कहना, हर किसी की इज्जत करना, और लगता भी था कि हम टीवी पर न्यूज देख रहे हैं। और आज के वक्त में लगता है कि यार हम न्यूज नहीं कॉमेडी शो देख रहे हैं, और हर कोई अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दों पर बात करता है, और पता नहीं लोग कहां से लाते हैं वो, जो कि डिबेट कम

हम थे वो थी और हमारा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

0: हम थे मोती और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।
1: इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय,
2: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग, सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन,
1: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
2: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन्स, इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप्स,
1: लिमिटेड सीट्स। आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 9891 78 44।
3: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन। एडमिशन ओपन फॉर 2026-27। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546। MGM यूनिवर्सिटी, NCC, छत्रपति संभाजीनगर।
4: कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी च्या UG आणि PG साठी ऍडमिशन मिळवा। BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी साठी MGM यूनिवर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेस च्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
5: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स चे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल। शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा।
6: ऍडमिशन Open for 2025-26. MGM University, N6 Sidco. Visit mgmu.ac.in. Call 9503082913.

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: तुझे सुन
1: हर दिल की आवाज बने।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
1: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
3: ये दूरियां
1: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है तो